0: Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ये तू सब क्यों परेशान खलते हुए हो जी?
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कोई कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकलो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
9: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368 or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.
10: Your sacrifice, a gift of hope.

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्करा है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। 96.7

0: 3.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम सभी कराम, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम और ये है कवाली स्पेशल शो। और समीन आपके लिए ये प्रोग्राम हर रोज़ पेश किया जाता है और इसमें दो घंटे की ये शो होता है और इसमें मुख्तलिफ कवालीज जो हैं वो आपके लिए पेश की जाती हैं। और आज भी इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं आज के प्रोग्राम की पहली कवाली। सभी कराम, अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता दिया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है तो फिर आपसे डायरेक्टली उस वक्त बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त तो मैं भी स्टूडियो में मौजूद नहीं होता आपके लिए, पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो अगर आपकी पसंद भी की कवाली हो तो आप ज़रूर बताया करें, कॉल किया करें दिन के वक्त या फिर हमें मैसेज कर दिया करें 07794818122 पे। आप सुन रहे हैं इस वक्त लिंक एफएम और ये है कवाली स्पेशल। चलते हैं अगली कवाली की तरफ।
1: इम्तिहान और भी

0: लफ्ज मेरे होंठ से
1: चुराए। वेलकम बैक तमाम सुनने वालों को एक बार फिर क्वाली स्पेशल में। फैसल याकूब सुल्तानी का सलाम कबूल हो। ब्रेक के बाद अब आपको मजीद क्वाली सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे, तो चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: सदा तू सब का है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: वेलकम बैक, खुशामदीद तमाम सुनने वाले जो इस वक्त सुबह सवेरे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कवाली स्पेशल। और कवाली स्पेशल में आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद, और सिलसिला जारी रखते हैं। और इंजॉय किया होगा आपने जो पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा भी, और अब मजीद जो है वो आपको कलाम सुनाते हैं। अब चलते हैं अगली कवाली की तरफ और इंजॉय कीजिए।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7.
16: Link FM.

0: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम.

0: on 96.7 and around the world online. This is Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
6: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
19: 6 perkara.
18: Perkara yang ketiga, percaya kepada
19: Rasul.
18: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: 96.7 Link FM.
1: मिनहाज अल-कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: योर नंबर वन फॉर न्यूज़ इन शेफील्ड, लिंक एफएम।

0: The voice of the communities, 96.7 Link FM.
1: Link FM.
2: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीमुशान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीमुशान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

0: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Sky Education Training अब आपके शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं Sky Education Pakistan Muslim Center शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए B.Tech Level 2 for role of professional taxi and private hire driver जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो सिर्फ दो दिन का कोर्स और टेस्ट अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 0750-7500-507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
10: Tu sabka hai khuda, tu sun meri dua, ye tuta dil mera tadpata hi raha hai sada. Tu sabka

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
9: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ?
8: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
9: तो भुगतो।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: From the heart of the city, this is Link FM.
1: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firk Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571-009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for our revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ये तू सब क्यों परेशान खलते हुए हो जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
7: ए एमओटी वाले हैं किधर
6: ए ए

याद है तुझे वो पलों का जुनून, जहां तू था और मैं था, बस मोहब्बत ही मोहब्बत थी। या लैला अल हुज़्न या रूह अल फिराक़।

0: your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: ये होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकेयां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Sky Education Training अब आपके शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं Sky Education पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए B.Tech Level 2 for role of professional taxi and private hire driver जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो सिर्फ दो दिन का कोर्स और टेस्ट अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 0750-7500-507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
1: मिनहाज उलकुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
2: Link FM.

जो तुम अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखना है, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Saeed Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
14: And the winner is
15: your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
17: Sheffield's very own community radio station.
18: Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Saeed Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
17: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
18: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
9: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से उलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
10: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

कौन लोग हो तुसी, कौन लोग हो यार, ये क्या बातें हो रही है भाई कि जब तुम नाराज हो तो मैं तुम्हें मनाऊं और जब मैं नाराज हूं तो तुम मुझे मनाओ। ओ भाई ये किधर होता है मतलब हो सकता है आपके घर में होता हो यार, हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई, और वैसे हम करने भी ना दें भाई। यार नाराज हो तो नाराज ही रहो भाई, लेकिन अगर आपके घरों में होता है, आपके अतराफ में होता है तो जरूर बताइएगा कि आपकी भी ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जैसी जैसी ये बयान कर रही है भाई।

0: बहुत खुश है भाई।
1: कौन लोग हो यार?
0: मैसेज आया कि जी होता है, तो चलें जी अगर आपके यहाँ होता है तो बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुन के कि आपके यहाँ ये होता है कि आप नाराज हो तो आपको राजी किया जाता है और जब कोई और नाराज हो तो वो राजी आप करते हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। फीलिंग भी होती है, हमें तो फीलिंग्स की स्पेलिंग भी याद रही थी।

What is the meaning of villains, yaar? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर ड्राइव टाइम तो की कर रही हो यार।

Studio number is 07-0114-261-8181 and 07939849339 is our WhatsApp का number है. और इस पूरे शहर में इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है, FM के जरिए जारी है, ऑनलाइन के जरिए जारी है, DAB के जरिए जारी है. लेकिन इस पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ एक लिसनर है जो हमें मैसेज जिसने किया, दो ने किया है. एक ने अपना नाम ना बताने का कहा, दूसरा अफशां जी कर ने किया है. बाकी लोग ठंड प्रोग्राम है जी, टेंशन ही कोई नहीं. ये सब गलतियां या कोताहियां या कोई प्रॉब्लम का इंतजार कर रहे हैं. और जैसे ही कोई लिंक एफएम में प्रॉब्लम होगा तो उस वक्त सामने आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार ये वाली चीज क्यों नहीं काम कर रही. बताएं हमारी खैरियत पूछें या ये बताएं कि यार हम लिंक एफएम सुन रहे हैं. कौन लोग हो तुझे यार? You have a right to disagree with me. अगर आप रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करते, लिंक एफएम के साथ नहीं जुड़े होते, तो यार फिर किसी को भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए भाई. क्या कहते हैं आप? मैं मजाक कर रहा हूं यार. आपका अपना स्टेशन है, जो आपका दिल है वो करें. अगर आपका अच्छी बातें करने का दिल है वो करें, कंप्लेन करने का दिल है कि मजा नहीं आ रहा तो बताएं हमें, हमें बताएं कि क्यों नहीं मजा आ रहा. और हम आपको आपकी जिंदगियों में मजे लाने के लिए लिंक एफएम क्या करें. तादाद कितनी है, इंतहाएं, हर गली हर कूचे हर शहर हर घर में मौजूद है, हर गाड़ी में मौजूद है. मैसेज करने में भी कंजूस हैं.

अबे बहुत तो कर रही है, अब ये नहीं पता है कौन सी वाली कर रही। और मोहसिन भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और कलीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुबारक हो। मैं गया

0: सब तो खत्म हो गई मैं क्या,
1: कभी हम ना हो जुदा।
0: वाह, एक तो गाने का ट्रैक बड़ा अच्छा खत्म होता है और आमतौर पर जो मूवीज होती है उसका एंड भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई आपकी मूवी का एंड बड़ा अच्छा हुआ हो। भाई हर एक की जिंदगी में भी एक मूवी होती है और हर बंदा ये समझता है कि मेरी वाली मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर है। किसी मूवी में मोहब्बत होती है, किसी में रोमांस होता है, किसी में मजबूरियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं।

0: किसी की किसी को फेंटी लग रही है।
1: इसी किस्म की मूवीज होती है ना आमतौर पर, अगर आप देखें आजकल के जमाने में भी इसी किस्म की मूवीज चल रही है। रिजवाना जी ने भी हमें ज्वाइन किया, कह रही है सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बहन। और कलीम की अभी तक ईद ही चल रही है भाई।

ट्रैक हम पेश करने जा रहे हैं अनाया नूर और हजीका के लिए, उनकी पसंद पे. उम्मीद करते हैं दे विल एंजॉय द ट्रैक. इफ यू जस्ट ट्यून इन, अवर व्हाट्सएप नंबर इज 0793984933.

0: कुछ हो बाकी अंदर बस
1: जी, मेरे पास भी कुछ पल बाकी हैं। 6 बजे तक का पल है भाई, उसके बाद अगर मैसेज किया फायदा कोई नहीं।

और अभी तक मैंने ट्रैक लगाया नहीं है, लेकिन पता चल जाता है, बंदे बंदे का पता है। ये जो ट्रैक फरमाइशी प्रोग्राम कर रही है कि आज जा रेला है ना, इसमें वो जुती वाला है, जुती वाला है कि मैं पता नहीं जुती उतार के तेरी तरह भागी भागी आऊं, बगैर सुने हुए बता रहा हूं मैं, बंदे का पता चल जाता है भाई। अगर यही है तो जरूर बताइएगा। अली हैदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली हैदर मेरे भाई, कैसे हो? कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अली, हाउ आर यू? आई होप यू हैव एंजॉयड द बैंक हॉलिडे। नो, इट वाज नॉट बैंक हॉलिडे, वीकेंड यार। आप वीकेंड पे या मेरी तरह घर ही बैठे रहे आप? बंदे का पता चल जाता है। अल्लाह ने अकल बड़ी दी है, ये और बात है कि लोगों ने चकरा चकरा के मारा यार, ऐसा चक्कर दिया कि मैं खुद चक्कर में आ गया। बस होते ना, कुछ लोग होते हैं कि आप जब उनके अतराफ में होते हैं तो ना आपका दिमाग काम करता है और ना आपका दिल। वाले दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन आपका दिल ये कह रहा होता है कि मिट्टी पाओ दिमाग को। जिसके बारे में जो प्रेडिक्शन की है वो सही हुई है भाई।

चाहते हैं, को हम देखना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं भाई। सीधी बात है, वो कहते हैं ना कि जो काम आपने करना हो ना वो आप कर सकते हो। ये जो बंदा ये कहते ना, वो ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, यार सिंपल इज दैट, उसको उसको अपनी जिंदगी में अपने प्यारों के साथ खुश रहने दो। और इस बात को समझ लो, उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ बहानों की जगह है, वरना जिंदगी में कोई बहाना नहीं होता। अब इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। यू नो, हम अपनी जिंदगी में एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अपनी औलाद से करते हैं। आपको उठा दे कि आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, विल यू मेक एन एक्सक्यूज? नो यू वॉन्ट, दैट इज अ ट्रू लव। फादर की या आपकी मदर की या किसी की तबीयत खराब नहीं है, विल यू मेक एन एक्सक्यूज? नो यू वॉन्ट। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वी ऑलवेज गो इवन एक्स्ट्रा माइल इफ वी हैव टू। बाकी जहां पर भाईजान ये हो गया था, मेरी मजबूरी, मेरा वो, तो मेरा वो, मिट्टी पाओ मैं गया। जब मेरी पसंद वाला है, पहले मेरा सुन लो भाई। ये सारे आज पंजाबी गानों के ट्रैक की क्यों फरमाइशें कर रहे हैं?

जी इश्क विछड़िया। वैसे आम तौर पर ये जो इश्क है ना, ये इश्क की बात नहीं कर रहा। अच्छा याद रखें, ये इश्का की बात कर रहा है, इश्क की नहीं बात कर रहा, इश्का। कहीं का नहीं छड़ता वैसे आपको। जरूर बताइएगा। ऊपर भी वीडियो, सो आई कैन नॉट चेक एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी इश्यू ऑन द डीएबी फ्रीक्वेंसी। No issue on FM's frequency. इससे क्या मुराद है? Because we are live on FM 96.7 FM पे। अगर आप उस पे सुन रहे हैं, उस पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बोलें FM की फ्रीक्वेंसी पे प्रॉब्लम है। अगर आप ऑनलाइन ऐप के जरिए सुन रहे हैं और उस पे कोई प्रॉब्लम है, तो आपके ऐप में प्रॉब्लम है। और अगर DAB पे सुन रहे हो, DAB पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप बताइए कि DAB पे प्रॉब्लम है। अब मेरे जो क्या पता कहां पे प्रॉब्लम है, बताओगे तो पता चलेगा। इस उम्र में वैसे भी मुझे पता नहीं चलता कि कहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम ना बताओ भाई, सलूशन बताओ।

0: 106.7 FM, and this is Drive Time with Jawad Janjua.
1: Ji, welcome back after the commercial break. If you just tune in or this is the first time you tune in, very warm welcome. Assalamu alaikum. This is Drive Time Show and I'm your host Jawad Janjua. Time is 17:01. पांच बज के एक मिनट हुआ चाहता है and I hope you are still with me and enjoying the Drive Time Show. We are live across South Yorkshire on 96.7 FM's frequency. We are live on DAB. Or if you just type Link FM live on Google, you can listen to Link FM. You can download our app also. Tune in. You can download our app, Link FM 96.7. Or you can search Link FM on TuneIn app also. So there are so many ways you can join.
2: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
3: जहाँ बातें बनते हैं, वही है Link FM. दिल से आपके साथ.
4: Link FM Sheffield.
5: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर. इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे. थर्सडे 28th ऑफ मई 2026 को अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में. डोर खुलेंगे 6:30 बजे. अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576.

0: हर सूर दिल को छो जाए
1: वही है लिंक एफएम,
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

और काफी ज्यादा हमने वो लगा लिए यार, रोमांटिक ट्रैक्स भी लगाए और पंजाबी ट्रैक भी लगाए, और कुछ देर पहले हमें मैसेज एक आया था और उन्होंने कहा था कि जी कोई सैड ट्रैक लगा दो, मैं गेट ड्राइव टाइम है जी सैड ट्रैक यार। चलो थोड़ी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, खासतौर पर जब आप ड्राइव टाइम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है अगर आप देना चाहें, लेनी नहीं है। ओ यार पहले जिंदगी में थोड़े सिर्फ एक बंदा ये बात कह रहा है कि आवाज सही नहीं आ रही, अगर आप लोगों को भी आवाज सही नहीं आ रही तो प्लीज बता दो भाई।

भाई है भाई है, कोई बात नहीं। कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तभी तो ठीक है भाई, सलाम कर रहे हो आते साथ ही। मेरे पे सलामती भेज रहे हो? मेरे पे कौन लोग हो यार? मेरे पे सलामती तो वो नहीं भेज रहे जिन्होंने जिन्हें भेजनी चाहिए थी, पर आपकी सलामती कबूल की हमने यार, और अल्लाह आपको भी सलामत रखे।

उनकी भी मजा आ जाता होगा ना, आता है आता होगा यार। चलो यार, ऐसा सैड ट्रैक निकाला है कि आपको भी मजा आ जाएगा। नया ट्रैक है 2026 का, एंजॉय द ट्रैक। जुनेद, आई नो यू ऑल्सो लाइक सैड ट्रैक्स, am I right?

0: जीती रहे मेरी बहना, जीती रहे। और राजिया जी ने भी हमें मैसेज किया है।
1: क्या कमाल थे बहाने भी तेरे,
0: क्या कमाल थे यार,
1: भी थे तेरे बेगाने भी तेरे।
0: ओए होए होए, मल्टीटास्किंग है।

ये ट्रैक की फरमाइश की थी, थोड़ा नाराज हो गए। कोई बात नहीं यार, सॉरी यार, सॉरी भाई, मैंने सैड ट्रैक को भी जरा मजाक वाला ट्रैक बना दिया। और क्या कह रही हैं जी, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे तो आवाज ठीक आ रही है। आवाज मुझे भी ठीक आ रही है यार, ये पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें आवाज ठीक नहीं आ रही। भाई अपना रेडियो चेंज करो, मोबाइल को अच्छा वाला ले लो यार। और क्या कह रहे हैं, आपको कोई नहीं आई थिंक, मुझे जो लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि वो पता नहीं हमें तो किसी ने सलामती नहीं भेजी, तो आप कह रहे हैं चाहिए, आप हकदार हैं सलामती के, आप दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से। थैंक यू फॉर योर मैसेज, कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन 0793984 9339। बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बिजी हैं, भाई के लिए टाइम नहीं। भाई 30 सेकंड्स में वी आर गोइंग फॉर अवर लास्ट कमर्शियल ब्रेक, और आहिस्ता आहिस्ता अब सब हम पर बमबारी कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस की। सो कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस, आई विल बी रीडिंग योर मैसेजेस आफ्टर द ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ

जी बिल्कुल सही कह रहा है जी। कोई बंदा हमें कह रहा है कि लगता है आपके साथ हमारे कनेक्शन नहीं मिलते। जी नहीं मिलते, हमने परमानेंटली डिस्कनेक्ट करा दिए। और हर एक से हम कनेक्शन लगाते भी नहीं है भाई, समझा करो यार। मैं कोई लिंक एफएम थोड़ी हूँ कि हर ऐप पे अवेलेबल हूँ। और कनेक्शन एक ही तरह जुड़ना चाहिए, बार बार कनेक्शन नहीं जुड़ने चाहिए। यार भाई मैं इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है मेरे पास, अगर आपको अभी तक हमारी आवाज नहीं आ रही। अगर आप भी बाकी लिसनर्स से भी ये गुजारिश है कि इफ यू आर लिसनिंग ऑन अवर ऐप और इफ यू आर लिसनिंग ऑन डीएबी, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन लिसन टू अस। वी हैव नो इश्यूज ऑन एफएम and app is also working fine, but only one listener is complaining about some issues, so I'll really appreciate if you can also tell me।

0: फॉल्ट है
1: मेरा। अगर आपको हंसी आए तो किसका कसूर है? मेरा। और अगर आपको मेरी बात पर रोना है तो किसका कसूर है?
0: मेरा।
1: मैंने हर इल्जाम अपने ऊपर डालने का फैसला कर लिया था कई साल पहले। जो बोले किसका कसूर है, बोलो मेरा। सारा कसूर मेरा यार। Enjoy the track. जुनेद, ये ट्रैक आपके लिए मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी आपके लिए, क्योंकि तेरा ही सारा कसूर है।

देते हैं वो भी वापस आ रहे हैं, चल जाता है, महसूस होता है दिल में कुछ कुछ होता है, पूछो कैसे, दिल बचा ही नहीं है तो उसमें होगा क्या महसूस। मेरे कहने का मतलब है भाई, हर बात को गलत एंगल में ले लेते हो। छुट्टियां खत्म हो गई, बच्चे स्कूलों में चले गए, अम्मियां और अब्बे फारिग हो गए, तो बच्चे जब घर में होते हैं उस वक्त ड्राइव टाइम को कहां लिफ्ट कराई जाती है। बच्चे स्कूल जाएंगे, मदरसा जाएंगे,

जी मैंने नहीं कहा कि आप लोग मुझे फॉलो करें टिकटॉक पर, मैं कह रहा हूँ लिंक एफएम को फॉलो करें। और यार मुझे ना करो फॉलो भाई, लिंक एफएम को आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे जितने लिसनर्स हैं ख़ासतौर पर, जितने जो नहीं भी हैं जो ओकेजनली लिंक एफएम को लिसन करते हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू फॉलो अस ऑन टिकटॉक, बिकॉज क्योंकि उसमें सिर्फ यू नो समटाइम्स वी शेयर इंफॉर्मेशन, समटाइम्स सम नाइस वीडियो पोइट्री भी होती है और बहुत कुछ होता है। समटाइम्स मैं उस पर ऊपर नशीद और जो हमद बारी ताला है वो भी लगाई जाती है। तो आप ज़रूर मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन टिकटॉक, और टिकटॉक आईडी इज लिंक एफएम 967। और शमरेज भाई आ चुके हैं जी, और स्ट्रेट आफ्टर ड्राइव टाइम शो आपकी शाम को मज़ीद चार चांद लगाएंगे शमरेज भाई, तो उनका भी आप साथ दें।

If you are a regular listener of Link FM, or if you occasionally listen to Link FM, I will really appreciate your feedback, not only about Drive Time Show, about all the transmission. 9398499 feedback. रेडियो है, आप ही बताइए. अगर आपको प्लेलिस्ट हमारी अच्छी लगती है, प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, तब भी बताइए. नहीं अच्छी लगती या नहीं प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, तब भी बताइए. आप बताएंगे तभी कुछ तब्दीली लेके आएंगे. वो बड़ी तब्दीली नहीं भाई, बाकी 3 मिनट ज्यादा मेरे से काम करवा लिया. फाइव हो गए, गए नहीं हो, एक एक मिनट बता रहे होते हैं. 50 हो गए, 51 हो गए. यकीन है कि आप शमरेज भाई की जान नहीं छोड़ेंगे. एनीवे जी, प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा. मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, खाली कोशिश करता हूँ कि आपकी शाम हमारे साथ अच्छी गुजर जाए. अगर आप, हम सब की जिंदगियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है. हमने ये नहीं कह सकते कि सब खुशहाल ही रह रहे हैं, खुशहाल भी रह रहे हो तब भी ज़िंदगी का पार्ट है टेंशन. तो कोशिश ये होती है कि आपकी शाम, आपका वक्त हमारे साथ अच्छा गुजर जाए. इस दौरान अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, फिर भी माफ कर दीजिएगा, इंसान हूँ. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपनी दुआओं में लिंक एफएम और टीम लिंक एफएम को भी याद रखिएगा. जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी कल के ड्राइव टाइम शो में. फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़.

लगे। गल तो वाकई सही बाने लगे, मैं भूली तो गई दोस्तों, फिर असा खेचना पी जाना, क्या करिए मजबूरी है। ते दो अच्छा तो गुजारा कोई नहीं, लेकिन मनो बड़ा दिल करना कि बस दौड़ के आ जाइए थे, लेकिन बस कुछ मसरूफियात में तो नहीं बंदा कदा सना। तो जनाब वाले गुलाम बड़ा करम है, उस तो अलावा जनाब सारा शामिल हो गए मुनीर साहब, मुनीर अब्बास साहब, इन्होंने असं जी वेलकम तो जी। बाकी संगी बेली सारा शामिल हो, स्पेशली सारे खामोश लिसनर्स जिन्हें वास्तव स्पेशली असं आने, उन्हें इंटरटेन वास्ते, उन्हें इंटरटेन करने वास्ते कि इंटरटेन वैन। तो बिल्कुल जनाब उम्मीद करना सारे संगी बेली भैन भरा ठीक ठाक हो सो और खैरी मेरी हो सो। बिल्कुल एवरीथिंग है, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, किसी की प्यार झगड़ा पहन नहीं देनी, प्यार ना रहन नहीं देनी, लिहाजा इस बारे जीते रहो, हंसते रहो, कहने के इंजॉय करो बस, बाकी छोड़ो ज्यादा सीरियस नहीं होना। तो जी अपनी मैं अपनी गल करना, शायद जो प्रदेश रहने उन्हें सारे पता हो कि जो मजा उन्होंने बड़ी इधर स्पेशली पाकिस्तान में उसने एक अपने चस है, अपने हाथ में कुरबानी करनी, कुरबानी फिर मुड़ी जी महल बननी, तो फिर जनाब वाली गोश होश तो कोई स्पेशल जी हंडिया शंडिया जनाब वाली सेव करनिया रुबक आलिया, तो फिर उन्होंने जनाब वाली एक दो दिन बाद जनाब वाली चाड़ी चूल्हे पर रिलैक्स होकर बह के जनाब वाली है नहीं तो गर्मी अंत होता है, लेकिन फिर भी खाने का एक अपना चस आना। तो उम्मीद करना तुम

नगीन खान उम्मीद के सारे संगी बेली ठीक ठाक हो सो और प्रोग्राम की सो एंजॉय कर रहे सो जी हां ऐसे स्टूडियो नंबर है 0114-261-8181 वेलकम नाइन 0779-398-49-339

te dire. कुर्बानी कर रहे सारा कुछ कर रहे फिर मुड़ी ना ताजा गोश्त खाओ पियते मौजा करो इतने भी हो जाना है लेकिन मसला है कि इतने उस तरह स्टार्टर हाउस कोई नहीं कुछ कुछ जगह पर है कुछ जिसमें आप मुझे कर सकते हो लेकिन फिर भी इतने पैडी लभनी है रही गई तो क्या ख्याल है तो बैठे तो साहब तो फिर उन्होंने क्या ख्याल है दवंदा बैड़ा करना पले आ क्या बात है ये फिर मौजों पाकिस्तान जी ने चलो तकने अल्लाह खैर कहते अगर अल्लाह जिंदगी रही अल्लाह पाक कुछ आ रखे हुए इंशाल्लाह अगले साल कोशिश करने कुर्बानी कर दी क्या ख्याल है।

लेकिन नहीं, बल्कि ये तुहानू सुनाने आ, ऐ रस सुनाने छोड़ो, वो दूआ जरा मलक करो तुसे।

0: Mas मैं सनाया कि 2 मिनट भी नहीं चले आता जनाब जी, कोई गल नहीं, इसकी दोबारा पेशकश करसा, चले आ ब्रेक तो फिर सुनो मजीद लाने सा गपशप।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अज़हरवी और तुम सुन रहे हो लिंक एफएम।
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोधर हमको ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment. Every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खड़ते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर होरे ना ए एमओटी वाले, वो हर किस्म ने गड्डियां नी एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
7: ए एमओटी वाले है किधर?
6: ए एमओटी प्ले

जी सामीन प्यार तुम्हें पागल नहीं होना, क्या बात है। अजकल बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है जनाब लिए, तो बहुत जबरदस्त जा रहा है इसलिए। तो अगर सर को नेक्स्ट गीत भी बड़ा जबरदस्त है जनाब अली, उसकी पेश करें थोड़ी देर थोड़ी जाना जनाब शामिल होगी। मोहम्मद मसूद साहब ने ऐसा जी वेलकम हो गया जनाब अली। आओ जी गुजर साहब क्या हाल है। हाँ जी वालेकुम सलाम चेस साहब आ गए, क्या बात है। तो क्या नेम साहब ना से मुलाकात, तू सुनाओ क्या हाल है। आई वेलकम एवर माशाल्लाह। तो हूँ चलें जनाब ने नेक्स्ट गीत की तरफ। ये असा कि कल सुनया सी मलिक कासम साहब असा कि गीत सुनाया सी ऑन द वे ड्यूसबरी। तो ये गीत असं स्पेशल नज़र करने जनाब चोई मसूद साहब आए हुए, चोई मसूद गुजर साहब नेम साहब ने नज़र कर सा, चौधरी जहीर गोंदल साहब ने नज़र कर सा, मिर्जा बाबर साहब ने नज़र कर सा, बाबर हजारवी साहब ने नज़र कर सा, तो बाकी जो सारे संगी बली सारे शामिल होने जनाब उन्होंने सारे नज़र है कि प्यारे गीत शाबान राजपूत तुसें नज़र कर सा, बाकी जो सारे संगी बेली हो और स्पेशली मलिक कासम साहब थोड़ी नज़र है गीत, क्योंकि थोड़ी फरमाइश ही कल मैं सुने मैं बड़ा पसंद आया गीत। मैं चलो अज अपने लिसनर्स की भी सुनाने, सुनो तो इंजॉय करो।

0: 96.7 FM अपने लोग ते अपनी गल्लां मैं सुना पेशकार शमरे सिंह चौधरी असल सुना साथ रहना सवारी क्षेत्र ते 8 बजे तोड़ी कीप लिसनिंग लिंक एफ एम 96.7 अपने लोग ते अपनी गल्लां उम्मीद करो सो जनाब प्रोग्राम की इंजॉय कर रहे हो बिल्कुल जी साढ़े नाल जिहड़े दोस्त अखबार शामिल माशाल्लाह उन्होंने व्यूज असें आए रहे उन्होंने मैसेज असें आए रहे और काफ़ी सारे दोस्त अखबार खुश हैं इंजॉय कर रहे हैं स्पैशली जनाब ग्लासगो वाले ते हुण चलने टाइम है ब्रे मशहूरी है मशहूरी बाद उसकी खबरनामा ते फिर उस तो बाद जनाब थोड़ा मजीद लगा सब थैंक यू वेरी मच जनाब उस तो बाद फिर मजीद सुन लाने गप शप ते उस तो बाद जनाब हवे खालद रंगी बहुत चंगा जहा गाना सुना आने मजा आया मजे ते जाके न
1: Do you know, this Ramadan, families in Palestine and many other countries are breaking their fast with almost nothing. They wait for iftar, not knowing if there will be any food on the table. Let's provide the basic necessities. Join Families Relief to help. Call to donate on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Give hope, give dignity, give this Ramadan.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदो नवाले इलाकों विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: जी हमारे सामीन नाजरीन वेलकम बैक था जी अक्सर सारे संगे बेलों की उम्मीद करना बिल्कुल ठीक ठाक था। खैर मेरी सो अपना तो अपने प्यारे ने पूछा ख्याल रखी सो जी। यू आर लिसनिंग लिंक एफएम 96.7 एफएम फ्रॉम शेफील्ड, अपने लोग ते अपनी गल्ला। मैं सर पेशकाश शमरे हुसैन चौधरी ते असर थोड़ा साथ रहा सवारे 6 तो लेते 8 बजे तोड़ी। असर स्टूडियो नंबर है जनाब 0114-261-8181-01142618181। ये वो नंबर है जिसमें गलबात करो, गप शप लाओ। तो जे सुन सो थोड़े चकने शर्माने माड़े हाल मैं पता है जरा गलबात घट ही करना माड़े को गलबात नहीं होनी तो उस तरह भी साढ़े को इंतजाम आया हुआ उन्होंने वास्ते भी। तो वो नंबर है जी 07939-8493399-07939-8493399। तो असर जनाब अली शामिल हो गए ने फौजिया खान वेलकम। तो पापा खालिद ने कि कम ठीक है सारी गल है तुम कम ठीक ही हो ब्लैक कैब कर रहे हो तो पिछले कुकड़े कुकड़े डब्बे जनाब पे डकी उड़ो तो अपनी गप शप लो जो मर्जी सुनो कुंडे ठाकने वाला। तो हूँ चलो अमीर काबल रदरम उन्होंने फरमाइश की जनाब बड़े तो ये गीत मास्टर होनी तरफ जनाब स्पैशली पाक कश्मीर इतिहाद ग्रुप चौधरी रमजान साहब की नज़र उन्होंने जो ग्रुप है चेयरमैन न वेलकम हो गया जी जनाब भाई साजिद लतीफ फ्रॉम रदरम उन्होंने नज़र एक करसा ए वाला गीत स्पैशली तो उन्होंने ग्रुप है नज़र। तो बाकी जनाब सारे इसलिए शामिल हुए ऑल द वे फ्रॉम ग्लासगो सा पापा खालिद और हैप्पी विजन आदिल भट्ट साहब उस जनाब भाई साजिद फ्रॉम रदरम सारे शामिल हुए हैं, फैजान साहब शामिल हुए हैं, राजा कमरान साहब शामिल हुए हैं, मसूद साहब सारे शामिल न, नईम साहब सारे शामिल न, तो बाकी जो सारे संगी बेली सारे शामिल स्पेशली सारे खामोश लिसनर जो सुनने सुनने संगी तो फिर अंदाजे लाने कि पता नहीं कौन है बंदा तो कुछ आना वै तो असं फिर आने चलो जो भी कुछ सुनना लगे चंगा काम कर लगे तो असं भी उन्होंने वास्ते चने तो चलो वो कुछ असं उन्होंने सुनी किन्ने तो कुछ वो सारिया सुनने असं पता कुछ ही सुनने अजय सा लाइव नहीं होने वह मैसेज मुसेज करने ना असं उन्होंने सुनी किन्ने तो बाकी जो खामोश रिश्ते घर बैठे हुए ना तो चलो कौन नहीं खैर तो कौन है ये तो यही क्या कर लगे वो लड़ने बंद पहले ना हांडी बाद लाए ना बल्कि हांडी लाई क्यों वो लगी कि थल तो शामी रोटी छोटी काम खराब हो जाए ना सुनो मिकी सुनो ना ना माड़े इधर रेडियो वाले तो कौन सो खाली सुनो मिकी बस हाँ माड़े वाले तो कोई इधर सो सुनो ना मैं अपनी हांडी रोटी करो तो मैं इधर बहन लगे ना तो गल ये कि वो मैं कहता कोई साड़ी मासी ताई चाची कोई भैन भरा कोई लगे होने शामी हांडी ना टाइम है रोटी ने मैं वह माड़े तकने वे तो कोई रोटी सड़ी गई या हांडी कोई लगी गई तो मिगी गाला कर सन फिर। अच्छा जी मैराब राजपूत साहब जनाब वेलकम। तो हूँ चले अस गीत की तरफ जनाब मास्टर मोहम्मद अमीर काबल रदरम साहब उन्होंने जी कि मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दी गलियां दी ये गुरदास साहब की आवाज़ गुरदास मान साहब की आवाज़ में है तो स्पैशली उन्होंने जो एक ग्रुप है पाक कश्मीर इतिहाद ग्रुप जिसने चेयरमैन जनाब चौधरी रमजान साहब तो उन्होंने बाकी संगी बेली स्पैशली उन्होंने नज़र कर सा और स्पैशली जनाब पापा खालिद तुसें नज़र क्योंकि तुसें भी बहुत वक्त इतना आए हो ना पिंडा की याद तो आनी है बंदे की फिर ना असं किसा आनी है क्या रे आदिल साहब तो राय कमरान साहब असं की बड़ी याद आनी है बस क्या करिए फसी गए भैड़े हूँ जाने जो कौन रे पिंडी यादें ही सही।

कश्मीर कोई शक नहीं जनाब अली, ते दिल ने शहजादे लोग ते अमन पसंद लोग। अल्लाह खैर करे, आज पहली जून हो गई है, रह गई पिछले दिहाड़े अठ, तकड़े हो गए अमन कितना करना है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो बाकी जनाब अली हम चलने सारे को नेक्स्ट का गीत है, और जनाब अली मइये मइये भी कदम कदम सुनने चाहिए ना, अरसे क्या मइये नहीं सुने, तो मइये की सुनने तकड़े के क्या कुछ साफ था, क्या पाने मइये क्या हाल है।

वो तो कौन ही चले। एक चंगा जहा गाना को सुनाई जरूर। चलो पर खाले तुसें नज़र करने तुसें जनाब वाले जेडे समरीन तुसें नज़र करने उस तो अलावा कहना सी भापे अमर गल काबिल साहब अमीर अच्छा अमीर बिल्कुल जनाब अमीर साहब नज़र गीत करी छोड़ने तो तुसें नज़र भी अमीर गाना सुन इसकी पसंद कर सो लियो जनाब वाले। ये मैं लोड़े सी मैं आखिरी गीत पेश कर सा लेकिन दूआ गीत नहीं चलन लगे चलो इसे पेश करी छोड़ने तो फिर उस तो बाद तकने का सिलसिला चलना।

कल शो हो रहा है 2nd of June एट अरूच बंकटिंग स्वीट शेफील्ड S47WZ फैमिली शो है। पैसे जनाब रिटायर

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
1: ट्यूसडे 2nd ऑफ जून को
0: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 0775413256।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
3: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
4: और हर सूर
3: दिल को छो जाए,
5: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
5: लिंक एफएम।

0: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
1: ट्यूसडे 2 जून को
0: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754।
2: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
3: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. Link FM.
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
3: Show visit AP Entertainment और चौधरी करामत पेश करते हैं King of Folk Music ताहिर नैयर. इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे.
4: ट्यूसडे 2nd ऑफ जून को
3: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे. अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576.
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
1: ट्यूसडे 2 जून को
0: अरूज बैंकुडिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Azir Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billouts Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment. Every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

0: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
1: ट्यूसडे 2 जून को
0: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
4: ट्यूसडे 2nd of June को
3: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंटब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
5: और हर सूर दिल को छो जाए
2: वही है लिंक एफएम,
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक।

0: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे।
1: ट्यूसडे 2nd of June को
0: अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
3: लिंक FM शेफील्ड।

0: difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम्ब पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You are listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
8: लिंक एफएम शेफील्ड।
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7।
10: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
11: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your Business Being Heard on the Radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
1: My name is Shireen.
4: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.